0: 健健康康的，就是陪我们一起到老好吗？
1: 没问题。
2: 身旁的人都形容他们是感情超好的三剑客，在演艺过程当中相互扶持，也一起倒数期待登上大巨蛋舞台的那一天。大爱新闻郭韵玲、林欣红、徐远志、吴淑女，台中报道。
3: 慈禧六十金藏演艺，年龄绝对不是入场券。在屏东，还有年仅3岁的小朋友也跟着家中的长辈大声唱诵，鼓舞其他的大人要更有演艺精神。
4: 入夜的东港联络处，挥汗勤练的庄严队伍中，却出现这个小不点。3岁孩子好动的身躯，在志工引导下变稳定。他站的是船头位置，气势声音不能输人。
5: 第一次带来纯粹就是顾小孩啦，然后他就听着那个音乐啊，跟着大家那个动作就学啊学啊学学。
4: 从6月开始跟随阿公阿妈练习，潘家威成了东港入金藏团队的团宠。他不止卖萌，人小志气更高。
5: 你最喜欢
6: 大一王？
7: 大一王哦。
5: 看前面，
6: 慈城。
5: 你也是慈城？
6: 我们两个都是大慈城。
5: 哦，我们两个都是大慈城。
8: 晚上在睡觉的时候，他就说他要听彩排的音乐，在家里面，他你就会无意间就会听到他在唱金藏里面的歌曲。
4: 不止他，还有这对就读国小的姐妹，也从一开始的场外等候，成了场内陪练。
9: 全家人就我跟公公婆婆，然后还有小姑都有加入今年的入金藏。然后因为我们要彩排的时间，就刚好就是他们下课时间，我就一起带过来。他都跟着我学 A 摆的动作，然后他就跟着阿妈学那个 V 的动作。
6: 阿妈喝完剂，
1: 那怎么办？
6: 姐姐教他。
4: 姐姐是阿妈的知音，能随时提醒。东港联络处陆续有孩子加入，金藏演艺的音符与肢体成了孩童的慈济精神启蒙。大爱新闻陈怡珍、王昭忠、蔡志聪，屏东报道。
3: 尼泊尔在周日发生的高山洪灾冲毁了多条的健行步道，当局最新公布一度是有数百人受困，包括上百名的观光客陆续救出，目前仍有5个人失踪。
10: आज पनि हाम्रो यो नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा उद्धारको काम हाम्रो चाहिँ जारी छ। धेरैवटा उडानहरू चाहिँ उद्धारको उडानहरू, केही चाहिँ राहतका सामग्रीहरू पनि हामीले चाहिँ पठाएका छौं। डीआरआरएनबीबाट हामीले राहत सामग्रीहरू प्राप्त गरेका छौं, त्यसमध्ये लाइट का सामान हो, जनरेटर का सामान हो, इसे हमें ले पढ़ाई रहेगा सों।
3: 尼泊尔当局表示，游客因为健行步道被冲毁了，没有办法自行返回，目前还有多人受困，正在展开紧急救援，目前没有造成人员伤亡。先前的中尼洪灾，尼泊尔也正式签署了永久住宅的合作备忘录。
11: 这个呢，就可以让大家在这里做生意、做生意、做生意。
12: 灾难过后，这是第一次彼得尔市市长真实的看到未来。
13: Summit को जो जून हाल को list निकालने वाला था 13 चांचुन को है ना, एकदम वहाँ ले जाएं, एकदम ही planning का साथ है ना, एकदम ही detailing का साथ वहाँ रु संबंधित ओरा आरु में पुगे रा वहाँ रु को प्रभावित हो को बीच में बसे रा उटा।
12: 尼泊尔特里苏里河洪灾重创努瓦廓县。彼得尔市受创严重，慈济志工是实地走访了9个里，造册完成1300多户，并且拟定了永久住宅与社区活动中心的规划蓝图。市长特地来到加德满都会所，共同签下合作备忘录。
11: OK， 你是最好的市长。
13: Okay.
14: You are the best.
13: You are good mama.
11: 哎呀，第一个由我们最好的营建团队呢，做一个非常重要的这个规划设计。让市长呢眼睛一亮，那第二整个活国团队呢各个具有专长，那让市长或者努瓦廓的所有的民众对我们产生了感动。
12: 预计将在14甲地原建约1400户的大爱屋，除了一般的住